0: இளம்பு பிரேக் டைம்.
1: शिशु तथा बालबालिकालाई अत्याधिक गर्मीबाट जोगाउन, बालबालिकालाई दिउँसोको चर्को घामबाट टाढा राखौं, उनीहरूलाई हलुका र खुकुलो कपडा लगाइदिऊ, गर्मीबाट बचाऊ।
2: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र।

0: फारम वितरण 2083 श्रावण 1 गते देखि। प्रवेश परीक्षा 2083 श्रावण 29 गते बिहान 7 बजे। कक्षा सञ्चालन 2083 भदौ 1 गते देखि। सम्पर्क नम्बर 011-26-342, 011-62-04-42, 98-41-43-49-72, 98-512-00-642।
1: चौतारा सागर छु गढी नगरपालिका 5 सिन्धुपाल्चो। Our services, deluxe room with AC, hot and cold water, LED TV, seminar hall, restaurant and bar, free Wi-Fi, parking area, familiar and joyful environment. Customer satisfaction is our conjugance. New Aruniku Hotel and Restaurant Private Limited, Sautara Shanga Subhari Nagarpalika 5, Sindhupalso. Email hotelaruniku@gmail.com. Contact 011-620-326-960-982293. New Aruniku Hotel and Restaurant Private Limited, Sautara Shanga Subhari Nagarpalika 5, Sindhupalso.
2: शिशु तथा बालबालिकालाई अत्याधिक गर्मीबाट जोगाउन, बालबालिकालाई दिउँसोको चर्को घामबाट टाढा राखौं, उनीहरूलाई हलुका र खुकुलो कपडा लगाइदिऊ, गर्मीबाट बचाऊ।
0: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र।

यसी आइनबा तसै यङदा थामुलाकी यङ परमेश्वर नोन परमेश्वर धर्मी सन्तान हिनबा हेन्दे दरेम यङ परमेश्वर से यङला लुइरी बाबा अद्भुत छुटकारा सन्दोदा जुबरी प्रेरित ताबा मुला रोमी पाँच अध्याय एक थेत बासनमा यङला विश्वास ज्ञाम सेन यङदा परमेश्वर दा सेम निवा मी दोना लबमुवा ओचे यङला प्रभु यीशु ख्रीष्ट सेन यङ परमेश्वर देन छ्याम दिग्पा मुला जब यङ यसुसे यङला लागि टिका लसुजी विवाद तामला परिणाम स्वरूप यङ आत्मिक रूपे हाला हिन्मा बिसी से मुला चुसे यङदा देन शान्ति पिनमुला चिन्ता हटम लमुला लोङमा हटम लमुला थेन्दे यङ यङला तिङ्रे परमेश्वरला आनन्द लक्षम परमेश्वर द प्रेम लाभरी देन सेवा लाभरी स्वतन्त्र तमुला दुई कुरन्ती तीन अध्याय सत्र तिग्द विषम प्रभु आत्मा हिन्न खेतबासिलमा जुन मि देन छ्याम प्रभुला आत्ममुला खे मि खलैला तहरी आता धार्मिक सम्बन्धरी शोभा देन परमेश्वरला लागे गे कदे पुरा लाभरी यङला रङलन शक्ति प्रयोग लाभ प्रयास लाभला सट्टा यङ धर्म ज्ञान पुराण स्वतन्त्री स्वजीव मुला यङ परमेश्वर देन एकतरी मुला रो आत्मज्ञम यङ देन ताम धस्युगो यङ रोला आत्मा से जेखेन पिनबरी हामला स्वतन्त्री ब्राला यङ मिगदेला नियम देन अपेक्षा कदेरी खिबा आरे यङ रङल शरीर सफा लाभ प्रयास लजीवा आरे यङ परमेश्वरला अद्भुत मायारी केन्द्रित मुला हेन्दे सन्दोदा किजीवा मुला तिग्द विषम यङ परमेश्वरला आत्मज्ञम प्रभा मुला पहिलो कुरान्थी एक अध्यायला तीस बरु परमेश्वर सेन एनी गदेदा ख्रिस यसु देन छ्याम गिक शोभा मुला परमेश्वर सेन ख्रिस याङला ज्ञान बुद्धि दोभा मुला थेराङलासी ख्रिस ग्याम सेन याङदा परमेश्वर दा सेम निभा मि सोजी ओछे याङला पापला सै फासी याङदा चोखो सोसी फेवा मुला परमेश्वर से याङ चुराङलासी नन सोला विषम सेमलासी मुला चिन्ता देन लोङबासे आइनबा तिग्द विषम यङ मन मुला कि यङ देन बुद्धि वा स्रोत साधनला चाङना मुला यङ लुइला पूर्वत पुनतरी ब्राजीबा मुला चु लुइरी ताबा योजनाका दे छोना लाभ्रे परमेश्वरला बुद्धि प्रयोग लवन मुला यङ धार्मिकता पवित्र देन मुक्तिदाता नोसे मुला जुन याङला रङलन गेला परिणाम आइनबा चु परमेश्वर ज्ञान याङदा निशुल्क उपहारला रूपी हाबा हिन्दा रोमी आठ अध्ययला चौध तिग्न विषम परमेश्वरला आत्मा से उनबा ज्ञामरी ब्रभा मिगदे जे परमेश्वरला कोला गदे हिन्ना रङला बेनन योजना गदे किन्सुगो थेनी गदे बन्डल लसुगो थेने थेनी गदे रद्दीला टोकरी ब्याङसुगो नम्र सुगो थेन्दे रङला परमेश्वरला आत्मा ज्ञान निर्देशित ताबरे किन्सुगो यसिसे रङला लागे फान्सु वा पुरान छुटकारा दाबी लसुगो जब रङ चु लसुला न ग्यारेन्टी पिन्न कि रङला लुई चमत्कारी दाबाका दे देन सफलता से भरताला जुन जेखेन आत्मज्ञान ब्रबका दे ज्ञान जेखेन ताबरी हमला थेन्दे रङ से रङला लागे स्वर्गरी इनाम कदे जुन रङ से आनन्द किन्सुला जब यसु याकर्जी दिन मुक्परी दोषी याङदा दिम भेला लाबरी हाला आमेन रङ्गिला जीवनले परमेश्वरले प्रशस्त मात्र आशिष दिन्छु गई धन्यवाद प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन विक्टर घम लिखित सन्देश याङला भाषारी नेन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ कार्यक्रमलाई बारे रङ्गिला केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव मुसम घन्दा सम्पर्क लसिगो घन्दा फोन नम्बर मुला 98 85 53 339 धन्यवाद हस् त त्यो समय रिङ बिदा दाजी रङ्गी छङमदानु जयमसी नमस्कार। Time check. It's 7 p.m.